दोस्तों, जब गणपति बाप्पा घर आते हैं तो हर कोना रौनक से भर जाता है। घर में हंसी खुशियाँ, मिठाइयों की महक, ढोल ताशों की गूंज, और ऐसा लगता है मानो खुद भगवान हमारे बीच बैठकर परिवार का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन हर आगमन के साथ एक विदाई भी तय होती है, और यही पल सबसे मुश्किल होता है। जब हम कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, पुढ़चा वर्षी लोकरिया, तो दिल जानता है कि ये जुदाई बस थोड़ी देर की है। आंखें नम हो जाती है, लेकिन अंदर एक सुकून भी होता है कि बप्पा ने हमारे घर में आकर हमें आशीर्वाद दिया, हमारी खुशियाँ बढ़ाई और हमें एक साथ जोड़े रखा। बाप्पा की विदाई दरअसल एक वादा है। जैसे उन्होंने 10 दिन हमें अपने पास बुलाया, वैसे जिंदगी भर हमारे दिलों में रहेंगे। तो आज जब बाप्पा समंदर में, नदी में, या जहाँ कहीं भी जिसके भी गोद में जाएंगे तो सुकून में रहेंगे। चलो ये मान ले कि वो कहीं दूर नहीं जा रहे हमें, बल्कि हमारे ही मन में बैठे हैं। और कभी भी गणपति बाप्पा हमसे दूर है ही नहीं। जब भी हमें जरूरत होती है, हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? गणपति बाप्पा को। जब भी कुछ शुभ काम करना होता है, हम बाप्पा को याद करते हैं। बाप्पा तो हर दिन, हाल के हर एक दिन, हर एक वक्त हमारे साथ है, हमारे आस पास है, और उनका आशीर्वाद हम पर बना ही रहेगा हमेशा। और हर बार की तरह अगली बार फिर मिलेंगे, इसी वादे के साथ आज हम गणपति बाप्पा को विदा करेंगे। विदाई थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या है ना, विदा करना भी जरूरी होता है। सो गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या। स्टे ट्यून्ड।

0: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर, लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, मेरा आज आपसे सवाल ये है, डिप्रेशन में जाने के रीजंस क्या हो सकते हैं?
1: काफी सारे रीजंस है वैसे तो, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो हम उनको ब्रैकेट कर सकते हैं ब्रॉडली चार चीजों में। जैसे एक हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर, कि जैसे उनके अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या उनकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है उनमें बदलाव आना, वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है। दूसरा फैक्टर आ सकता है कि जेनेटिक, क्योंकि बहुतों में ये जेनेटिक भी होता है कि उनके पेरेंट्स को डिप्रेशन रहा हो या ग्रैंड पेरेंट्स को रहा हो या और किसी रिलेटिव को रहा हो। तो पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे नेगेटिव थिंकिंग का होना, जैसे कुछ हो जाने के बाद हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी के डिस्कशन से या हमारा कॉन्फिडेंस मान लो लो हो जाता है साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिर हम कंफ्यूज्ड होने लगते हैं, फिर हमको इन्फीरियोरिटी भी हो सकती है वो सोच के, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो कि साइकोलॉजिकल इन नेचर है, तो दूसरा कॉज या फैक्टर वुड बी साइकोलॉजिकल। तीसरा हो सकता है, देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंट का स्ट्रेस, जैसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, कि अगर टॉक्सिक वर्क प्लेस है, आपके कलीग्स हैं या आपके बॉस है वो अगर कॉन्स्टेंटली आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, विच इज वेरी कॉमन इन दीज डेज, यू नो, या उनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं है, टॉन्टिंग बिहेवियर है, तो ये हो गया एनवायरमेंट का। कभी कभी क्या होता है फैमिली में भी टॉन्टिंग बिहेवियर बहुत होता है फैमिली मेंबर्स का, जैसे सिबलिंग्स का होगा या हस्बैंड वाइफ के बीच होगा या सास ससुर, है ना, ऐसे फैमिली मेंबर्स भी हमको टॉन्ट करते हैं कभी कभी, तो ये एनवायरमेंट है। कभी कभी फाइनेंशियल लॉसेस लोगों को हो जाते हैं, तो ये सारे एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि क्रॉनिकली इल होते हैं, कि बहुत साल से, जैसे कोई बेड रिडन हो या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उनको फिजिकल एलिमेंट्स हो, कोई मोडालिटीज हुई हो, तो वो भी एनवायरनमेंट का ही भाग होता है। और चौथा है लाइफस्टाइल फैक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है हमारे लिए अभी। और अब लाइफस्टाइल के फैक्टर्स में आता है जैसे पुअर स्लीप, जैसे आजकल हम जल्दी नहीं सो रहे हैं और हम जितना हमको सोना चाहिए उतना टाइम नहीं सो पा रहे हैं। फिर सब्सटेंस अब्यूज, जैसे अल्कोहल का सब्सटेंस लेना, ये बहुत एक कॉमन हो गया है, जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, ऐसे बहुत सारे जो सब्सटेंस यूज होता है, तो ये भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आते हैं। तो हमने जो चार चीजें अभी डिस्कस की वो है बायोलॉजिकल रीजंस, साइकोलॉजिकल रीजंस, एनवायरमेंटल रीजंस एंड लाइफस्टाइल रीजंस।
0: सो मैम ने बताई हुई चीजें फॉलो कीजिएगा, ये सब चीजें याद रखिएगा। एंड तुमच्या मनात काही प्रश्न असेल तर आम्हाला व्हाट्सअप करा 9359320080। सो बी सेफ, कीप मुस्कुराना एंड स्टे ट्यून।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UETS क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: वैसे यार आप लोगों की बहुत फरमाइश होती है और हर फरमाइश मैं पूरी करने की कोशिश करता
1: हूँ।
0: तो यार आज के गाने की फरमाइश आई है अमृता देशमुख जी की तरफ से इस गाने के लिए।
2: पल भर के लिए कोई हमने प्यार कर ले झूठा ही सही।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है यार। अमृता जी ने बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। चलिए फिर इनकी फरमाइश पूरी करते हैं। और हाँ आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश होना तो व्हाट्सएप करें 9359320080 पर 9359320080। तो इस नंबर पर आपकी फरमाइश बताइए और फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिएगा अमृता जी का फेवरेट गाना एंड सुनते रहे MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: प्यार। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

डिग्री सिर्फ एक पेपर नहीं होती, ये प्रूफ होता है कि उन सालों की मेहनत का, लेट नाइट स्टडीज का, असाइनमेंट का, एग्जाम का और सबसे इम्पोर्टेंट नेवर गिव अप वाली स्पिरिट। और इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का मौका है एमजी यूनिवर्सिटी के 5th कॉन्वोकेशन सेरेमनी का। एमजी यूनिवर्सिटी जहाँ स्टूडेंट ने सिर्फ क्लासरूम में एजुकेशन नहीं ली बल्कि अपने टैलेंट, स्किल और ड्रीम्स को एक डायरेक्शन दी है। और अब वो मोमेंट आ गया है जब स्टूडेंट्स अपनी मेहनत का रिजल्ट ऑफिशियली रिसीव करेंगे। देयर डिग्री, देयर अचीवमेंट, देयर मोमेंट्स। कॉन्वोकेशन का मतलब सिर्फ गाउन पहनना और डिग्री लेना नहीं होता है, ये एक चैप्टर के कम्प्लीट होने और एक नए चैप्टर के स्टार्ट होने का मोमेंट होता है। कल तक जो स्टूडेंट्स कैंपस में लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स और सबमिशन के बीच बिजी थे, आज वही स्टूडेंट अपने करियर की नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार हो गए हैं। किसी के लिए यह डिग्री एक ड्रीम कम ट्रू है, किसी के पेरेंट्स के लिए गर्व का मोमेंट है और किसी के लिए फाइनली हो गया भाई। तो एमजी यूनिवर्सिटी के 5th कॉन्वोकेशन में सेलिब्रेट होगा टैलेंट, डेडिकेशन और सक्सेस की ब्यूटीफुल जर्नी। सभी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को एमजीएम 90.8 एफएम की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आपकी डिग्री आपके हाथ में आ गई है, अब असली कहानी तो यहाँ से शुरू होगी। एमजीएम यूनिवर्सिटीज 5th कॉन्वोकेशन 26 सितंबर 2026।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय।

छत्रपति संभाजी नगर। कॉन्टैक्ट नंबर 9422653331।

0: मैंने कहा पढ़ा था यार, हेलो कहना जितना हैप्पीनेस होता है ना तो उतना ही पेनफुल होता है गुड बाय कहना। आरजे अदनान आपके साथ है MGM 90.8 FM से। ठीक 10 दिन पहले ना तो हमने वेलकम किया था गणपति बाप्पा का अपने घर पर, अपने मंडल के अंदर उन्हें हाय हेलो किया था, उनका वेलकम किया था। और वेलकम करते वक्त जितनी खुशी थी ना हमारे चेहरे पर, उससे भी कई गुना ज्यादा अब गम हमारे चेहरे पर नजर आ रहा है। क्योंकि किसी को वेलकम करना बहुत खुशी वाली बात होती है, लेकिन किसी को बाय करना, अलविदा कहना और पुढ़ वर्षी लौकर या ऐसा मनना ना तो खूब अवगड़ हस्ते। इसीलिए तो कहा है ना कि गुड बाय इज पेनफुल होता है, क्योंकि जाते वक्त ना तो बहुत सारी चीजें इंसान वो शख्स लेकर जाता है। अब 10 दिन ना तो हमारे कैसे गुजरे हमें खुद पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे भी अब आदत हो गई थी कि हर दिन ना तो हर शाम मैं हर एक पेंडल जाता था अपने शहर के, वहाँ उस पेंडल की इन्फॉर्मेशन लेता था, वहाँ के लोगों से बाइट्स लेता था और बाकी लोगों से बात करता था, और ये सब कुछ आदत लग गई थी इन 10 दिनों की। लेकिन आज का जो दिन है ना ये थोड़ा पेनफुल तो गुजर रहा है, क्योंकि बाप्पा को आज हम अलविदा कहने वाले हैं। सो इसी उम्मीद के साथ हम बाप्पा को अलविदा कहते हैं कि जितने भी हमने उनसे प्रार्थनाएं की है वो प्रार्थना पूरी करे, हम सभी की प्रार्थनाएं पूरी करे। पुढ़ चौरसी लौकर या हेज अपना था बाप्पा ना सांगू शकतो। सो जितने खुशी के साथ हमने बाप्पा का वेलकम किया था, अब थोड़ा मुस्कान के साथ और गम भरे दिल के साथ बिना आज हमें बाप्पा को अलविदा कहना है। सो बोलिएगा गणपति बाप्पा मोरिया पुढ़ चौरसी लौकर।
1: Only on MGM 90.8 FM. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर। और दिशा हॉस्पिटल संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5 छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 7 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी।

दोस्तों, गणपति बाप्पा का आगमन हमेशा रंग रोशनी और रौनक लेकर आता है। लगता है घर में जैसे भगवान आए हैं, बल्कि अपना सबसे प्यारा मेहमान आया है जो हर चिंता को मुस्कान में बदल देता है। बरोबर ना, आरजे अदनान आपके साथ है। लेकिन हर मेहमान की तरह बाप्पा की भी विदाई तय है और यही पल सबसे ज्यादा चुपता भी है, क्योंकि आने में शोर है, हंसी है, खुशियाँ है और जाने में सिर्फ आंसू और खामोशी है। जब ढोल ताशे बजते हैं, जब हम कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया पुढ़चा वर्षी लोकरिया, तो आवाज बाहर से भले ही ऊंची लगे, पर भीतर कहीं गहराई में दिल कह रहा होता है, बाप्पा जरा और रुक जाओ ना, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा सा लगेगा। लेकिन शायद यही बाप्पा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वो हमें सिखाते हैं कि जुदाई में भी मुलाकात का वादा छुपा होता है और जाते जाते भी हमारे दिल में जगह और यकीन छोड़ जाते हैं। तो आज जब बाप्पा जल में समा जाएंगे, तो चलिए उन्हें आंसुओं से नहीं मुस्कान से विदा करेंगे, क्योंकि वो जा नहीं रहे, बस हमारे मन में, हमारी यादों में और हमारी हर दुआ में हमेशा साथ रहेंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बरकरार रहेगा। सो गणपति बाप्पा मोरिया पुढ़चा वर्षी लवकरिया। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान इन द शो।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, NN5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: मैं बोला ही।
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: महात्मा गांधींचे विचार तुमच्या अभिनयातून मांडण्याची सुवर्ण संधी, MGM विद्यापीठाच्या संगीत व नाट्यशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित महात्मा गांधींच्या विचारधारेवर आधारित पथनाट्य स्पर्धा। महाविद्यालयीन, शालेय व कोणत्याही संस्थेचे संघ सहभागी होऊ शकतात। संघात 6 ते 15 कलाकार असावे। सादरीकरणाचा कालावधी 10 ते 15 मिनिट। मोफत प्रवेश आणि हजारो रुपयांची रोख पारितोषिके जिंकण्याची संधी। स्पर्धा दिनांक 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी MGM विद्यापीठामध्ये। संपर्क 9881214898 आणि 9075023520।

0: फीलिंग्स।
1: यार आपको पता है कि एक गाना सुपर हिट कब होता है?
2: दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड पूरे स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो On MGM 90.8 FM।
1: तो यार जाहिर सी बात है, एक गाने को सुपरहिट बनाने के लिए उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। जैसे कि लिरिक्स परफेक्ट होने चाहिए, म्यूजिक परफेक्ट होने चाहिए, उसके साथ साथ गाने वाला सिंगर जो है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, और इसके बाद जो आउटपुट निकलता है ना वो होता है ब्लॉकबस्टर। अब आप ही सोचो ना कि इतने सालों बाद भी हम पुरानी मूवीज को याद रखते हैं या पुराने एक्टर को याद रखते हैं, ऐसा क्यों होता है भला? पता है कहीं ना कहीं हम उनके गाने सुनते हैं और उन गानों से याद आता है कि अरे यार ये गाना तो इस मूवी का है और इस मूवी में तो ये एक्टर था और ये एक्टर तो कमाल का है। मतलब ये सारी बातें हमें गाने की वजह से याद रखते हैं। तो मूवी के लिए गाना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉरेन कंट्रीज में गाने का रिवाज होता नहीं है, ज्यादातर वो अपनी स्टोरी पे और एक्शन पे

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UETS क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: चाहता है।
1: यार बहुत लोगों ने बोला है कि एज बस एक नंबर ही तो होता है, पर क्या हम इन बातों पे बिलीव करते हैं?
2: दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड पूरे स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो
1: So, यार आज इस बात पे ना मैं दिल से बिलीव करने लगी हूँ कि एज बस एक नंबर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें आनंद बख्शी की, जी हाँ, ये एक बेहतरीन पोएट और लिरिक्स राइटर है जिन्होंने अपने गाने लिखने की जर्नी 90s से स्टार्ट की है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि 2000 के एरा तक वो एक्टिव थे। मतलब अगर आप DDLJ और मोहब्बतें जैसी मूवी का नाम ले लो, उनके गाने आज भी हमारे जुबा पे छाए रहते हैं। और आपको पता है ये सारे गाने लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने। जैसे कि हम कहते हैं कि एज की वजह से इंसान अपने एज को छोड़ के किसी और की एज की थॉट्स को रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर बात पूरी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि ये जो एज वाला रूल है ना, वो कुछ लोगों पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ सिंगर होते हैं और कुछ एक्टर होते हैं जिनके ऊपर एज मैटर ही नहीं करती। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आनंद बख्शी का आप यही गाना सुन लो। स्टे ट्यून्ड एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: जब हम गाने सुनते हैं ना तो बस एक्टर की तारीफ करते हैं या एक्ट्रेस की तारीफ करते हैं।
1: दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड पूरे स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो On MGM 90.8 FM.
0: उम्र के साथ साथ हम कितना कुछ सीख जाते हैं। बचपन में मैं गाने सुनती थी ना तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस के ऊपर होता था कि वाओ यार कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं और मुझे तो लगता था कि वही वो गाना गा रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ समझ आया कि उनके पीछे छुपी हुई आवाज किसी और की होती है और फिर मैं तारीफ करने लगी सिंगर्स की। यार लता मंगेशकर जी की आवाज कितनी बेहतरीन है, उदित नारायण कितने बेस्ट सिंगर है, लेकिन इन सारी बातों से परे एक बात थी जो थी कि इस सॉन्ग के लिए जो म्यूजिक और जो लिरिक्स इम्पोर्टेंट है वो किसके है। और धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि म्यूजिक कंपोजर और लिरिक्स राइटर भी सॉन्ग के सुपरहिट होने में या सॉन्ग के पसंदीदा आने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद आज जब वो गाने मैं दोबारा सुनती हूँ ना बिलीव ही नहीं कर पाती कि ये वही सॉन्ग राइटर और म्यूजिक कंपोजर थे जिनको मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आनंद बख्शी का एक और सॉन्ग सिर्फ आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: फिर जाहिर सी बात है कि हर किसी का अपना सपना होता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए पता नहीं क्यों लेकिन मुंबई जाना ही पड़ता है।
1: दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड पूरे स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो ओनली ऑन MGM 90.8 FM।
0: आनंद बख्शी की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी जिन्होंने टीन एज से ही शायरिया लिखना स्टार्ट कर दिया था पर कभी उन्होंने सोचा नहीं कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाऊंगा। इस तरफ बढ़ने की बजाय वो आर्मी नेवी इस जैसे फील्ड में गए लेकिन कहते हैं ना सपने हमें चैन से जीने नहीं देते और हम फिर उसी तरफ बढ़ जाते हैं जहां पर हमारी किस्मत हमें ले जाना चाहती है। तो आनंद बख्शी जी भी मुंबई चले आए और धीरे धीरे उन्होंने अपना इरादा पक्का किया कि उन्हें अब बॉलीवुड इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। उसी के साथ

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है तो बात है।
1: कभी कभी प्यार बड़ी जोर से नहीं आता, बस धीरे से दस्तक देता है। एक चाय की दुकान, एक किताब और दो अनजाने चेहरे। वो रोज उस दुकान पर आती थी अदरक वाली चाय और वही पुरानी किताब के साथ। और वो लड़का जो बस उसके आने का बहाना ढूंढता था। चाय तो कम पीता था लेकिन उससे बहुत देखता था। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, आप रोज यही किताब क्यों पढ़ती हो? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर बार इसे पढ़ते हुए कोई ना कोई नया चेहरा नजर आ ही जाता है। और फिर वो दोनों हंस पड़े। कभी किताबों की बातें शुरू हुई और फिर जिंदगी की। कहानी छोटी थी लेकिन एहसास गहरा था। कभी चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप महसूस होता है।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

दोस्तों, जब गणपति बाप्पा घर आते हैं तो हर कोना रौनक से भर जाता है। घर में हंसी, खुशियाँ, मिठाइयों की महक, ढोल ताशों की गूंज, और ऐसा लगता है मानो खुद भगवान हमारे बीच बैठकर परिवार का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन हर आगमन के साथ एक विदाई भी तय होती है, और यही पल सबसे मुश्किल होता है। जब हम कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, पुढ़चा वर्षी लोकरिया, तो दिल जानता है कि ये जुदाई बस थोड़ी देर की है। आंखें नम हो जाती है, लेकिन अंदर एक सुकून भी होता है कि बप्पा ने हमारे घर में आकर हमें आशीर्वाद दिया, हमारी खुशियाँ बढ़ाई और हमें एक साथ जोड़े रखा। बाप्पा की विदाई दरअसल एक वादा है। जैसे उन्होंने 10 दिन हमें अपने पास बुलाया, वैसे जिंदगी भर हमारे दिलों में रहेंगे। तो आज जब बाप्पा समंदर में, नदी में या जहाँ कहीं भी जिसके भी गोद में जाएंगे तो सुकून में रहेंगे। चलो ये मान ले कि वो कहीं दूर नहीं जा रहे हमें, बल्कि हमारे ही मन में बैठे हैं। और कभी भी गणपति बाप्पा हमसे दूर है ही नहीं। जब भी हमें जरूरत होती है, हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? गणपति बाप्पा को। जब भी कुछ शुभ काम करना होता है, हम बाप्पा को याद करते हैं। बाप्पा तो हर दिन, हाल के हर एक दिन, हर एक वक्त हमारे साथ है, हमारे आसपास है, और उनका आशीर्वाद हम पर बना ही रहेगा हमेशा। और हर बार की तरह अगली बार फिर मिलेंगे, इसी वादे के साथ आज हम गणपति बाप्पा को विदा करेंगे। विदाई थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या है ना, विदा करना भी जरूरी होता है। सो गणपति बाप्पा मोरिया, पुढ़चा वर्षी लोकरिया। स्टे ट्यून्ड।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: महात्मा गांधींचे विचार तुमच्या अभिनयातून मांडण्याची सुवर्ण संधी। MGM विद्यापीठाच्या संगीत व नाट्यशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित महात्मा गांधींच्या विचारधारेवर आधारित पथनाट्य स्पर्धा। महाविद्यालयीन, शालेय व कोणत्याही संस्थेचे संघ सहभागी होऊ शकतात। संघात 6 ते 15 कलाकार असावे। सादरीकरणाचा कालावधी 10 ते 15 मिनिटे। मोफत प्रवेश आणि हजारो रुपयांची रोख पारितोषिके जिंकण्याची संधी। स्पर्धा दिनांक 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी MGM विद्यापीठामध्ये। संपर्क 9881214898 आणि 9075023520।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

डिग्री सिर्फ एक पेपर नहीं होती, ये प्रूफ होता है कि उन सालों की मेहनत का, लेट नाइट स्टडीज का, असाइनमेंट का, एग्जाम का और सबसे इम्पोर्टेंट नेवर गिव अप वाली स्पिरिट। और इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का मौका है MGM यूनिवर्सिटी के 5th कॉन्वोकेशन सेरेमनी का। MGM यूनिवर्सिटी, जहाँ स्टूडेंट ने सिर्फ क्लासरूम में एजुकेशन नहीं ली बल्कि अपने टैलेंट, स्किल और ड्रीम्स को एक डायरेक्शन दी है। और अब वो मोमेंट आ गया है जब स्टूडेंट्स अपनी मेहनत का रिजल्ट ऑफिशियली रिसीव करेंगे। देयर डिग्री, देयर अचीवमेंट, देयर मोमेंट। कॉन्वोकेशन का मतलब सिर्फ गाउन पहनना और डिग्री लेना नहीं होता है, ये एक चैप्टर के कम्प्लीट होने और एक नए चैप्टर के स्टार्ट होने का मोमेंट होता है। कल तक जो स्टूडेंट्स कैंपस में लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स और सबमिशन के बीच बिजी थे, आज वही स्टूडेंट अपने करियर की नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार हो गए हैं। किसी के लिए यह डिग्री एक ड्रीम कम ट्रू है, किसी के पेरेंट्स के लिए गर्व का मोमेंट है और किसी के लिए फाइनली हो गया भाई। तो MGM यूनिवर्सिटी के 5th कॉन्वोकेशन में सेलिब्रेट होगा टैलेंट, डेडिकेशन और सक्सेस की ब्यूटीफुल जर्नी। सभी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को MGM 90.8 FM की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी डिग्री आपके हाथ में आ गई है। अब असली कहानी तो यहाँ से शुरू होगी। MGM यूनिवर्सिटीज 5th कॉन्वोकेशन 26 सितंबर 2026।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली

सुनो सुनो ए भाई और बहनो, मरमकन भाई छक्कन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: झुमका गिरा रे।